पंख परहोणी धुनि सुहावा बाग नौबत बजी सुबह स्यों चलन काल कर साज फरीदा रात कथ

जद अमृत जात रंग माया कै राऊ जप तप संजम धर्म ना कमाया सेवा साध ना जानिया हर राया कहो नानक

चित की इच्छा तब चरणन मन रहे हमारा अपना जान करो प्रत पारा हमरे दोष्ट सब तुम काव हो आप हाथ दय मोहे बचाव हो।

जशन बजायो। आदि अंत एक अवतारा सोई गुरु समझयो हमारा। नमस्कार तसी को हमारी सकल प्रजा जन आप सवारी। शिव कन को शिव गुण सुख दियो सदरन को बल मोह बद कियो।

आप अपनी बुद्ध है जेती वर्णत पेन पेन तो है तेती तुमरा लखा न जाए पसारा किहे बिद सजा प्रथम संसार एक रूप अनूप स्वरूपा रंग भयो राव कहीं भूपा।

कहूं सिमट भयो शंकर कैठा सगरी श्रेष्ठ दिखाई अचंपव आदि जुगाद स्वरूप स्वयंपव अब रक्षा मेरी तुम करो सिख उबार या सिख संग्रो दोष जेते उठ बत उत्पाता सकल मलेश करो रण खाता जे आस तुज तब शरणी परे तिनके दोष्ट दुखद हवै मरे पुरख जवन पग परे तिहारे तिनके तुम संकट सब टारे जो कल को एक बार ते आए हैं।

संत साजन पै सरसे पूरे गुरते जानी सुनते पुनीत कहते पवित सतगुर रहया पर पूरे बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तूरे मुंडावणी महला पंजवा थाल विच तिन वस्तु पइयो सत संतोख विचारो अमृत नाम ठाकुर का पयो जिसका सबसे आधारो जे को खावे जे को पुंचै तिसका होइ उधारो एह वास्तव तजी नह जाई नित नित रख उर तारो हम संसार चरण लग तरियै

तिन हों कुरबैणी। जिन्ना सतगुर मेरा प्यारा आराध्या तिन जन देखा नैणी। हों वारिया अपने गुरु का जिन मेरा हर सज्जन मिलया सैणी।

0: ते दर्शन पुत प्यारे दे ओ पावने
1: पंजाब का महाराजा जेल विच तख्त पे बैठा सी हुक्म दे के किसे नु फाइल ला सकदा सी किसे उम्र कैदी नु रिहा कर सकदा सी अज वो आप इना मजबूर है कि बीमारी की हालत भी अपने प्यारे पुत्र नु मिलना चाहता है तो मिल नहीं दिंदा। वक्त की बात है गुरु ग्रंथ साहब के अंदर अकाली बाणी ने कई बड़े फैसले अहम किए हैं। खिन में राव रंक को कर ही राव रंक कर डारे रीते परे परे सखनावे ये सांको व्यवहार है। परमात्मा सर्वशक्तिमान है नदियां दे विच तिब्बे दसाले थली करे इसका कीड़ा थाप दे पातशाही लश्कर करे सुहा तख्तां दे वारस कदे कैदी बादशाह कदे गुलाम सेवादार ते कदे गुलाम बादशाह। अज बेचारा खड़ग सिंह जेल विच पिया होया कोई उसकी आवाज नहीं सुनता उसकी इच्छा है कि हुण तां मैं मारे जाना है किते कंवर नौ निहाल सिंह एक बार मैनू मिलता मैं राजा ध्यान सिंह दीआं करतूतां उहदे सामने रख दिंदा जे मैं मारिया जा रहा कि मेरा पुत भी नहीं इदा मारिया जाए। बोले मरदियां भी महाराज मूहों केरा आ मेरे को।

विजय सिंह ने इशारा तक के विजय सिंह ने इशारा तक के थोड़ा भगदा बरूद लाया उसके कमर से डिग गया सजा उसके कमर से डिग गया तो क्यों हो गया होने

उनके कमर पे डिगिया, अच्छा उनके कमर पे डिगिया तो क्या ना होनी ने डार मार के कमर खमिटिया, डार मार के कमर खमिटिया और जगने होश बुलाया।

देव जोग चली आना इंडिया अपना मलाप दीवा लमला दियो एक बार मुखी पोती दा

0: केरबोदी रंगीली धरती दे वसनीक श्रोतियो, तुसी ये प्रोग्राम FM रेडियो CISK 94.3 तो सुन रहे हो। ये प्रोग्राम गुरुद्वारा साहिब वैष्णव सिंह सवा विलियम्स लेक तो प्रसारित किया जा रहा है। उम्मीद रखते हाँ कि इस प्रोग्राम नूं होर भी खोज भरपूर बनाउण लई तुसी सानूं सुझाव दिंदे रहोगे।
1: साडे स्टूडियो दे टेलीफोन नंबर तां आप जी नूं पता ही है, जे नहीं तां ओह वी लिख लो जी। एरिया कोड 250-392-3074 अते फैक्स नंबर एरिया कोड 250-392-3075।
2: साडा ईमेल एड्रेस नोट करो जी, singhsabha2@gmail.com। एक बार फिर नोट करो जी, singhsabha2@gmail.com।
3: You are listening Sikh Radio broadcasting from Gurdwara Sahib Western Singh Sabha Williams Lake. Any comments and suggestions please call 250-392-3874.

नेड़े सी पलवान कहों दे जीव नू लग गए ताले चटनियां पा गए वेलड़ रोटियां पन्नण वाले नेड़े सी पलवान कहों दे।

शब्द रस पाया, नाम निरंजन उर धरिया, हर नाम रसक गोबिंद गुण गाहक, चाहक तत् समत सरे, कव कल ठकुर हरदास तने, गुर रामदास सार अपार परे, छुटत परवाह अमह अमरा पद, अमृत सरोवर सद भरिया, ते पीवह संत करह मन मज्जन, उब जिनहु सेवा करिया, तिन भउ निवार अनपह पद दीना, शब्द मात्र ते उदर तरे, कव कल ठकुर हरदास तने, गुर रामदास सार अपार परे, सतगुर मत गूढ़ बिमल सत संगत, आत्म रंग चलूल भया, जागिया मन कवल सहज प्रकाशिया, अपै निरंजन करह लहा, सतगुर दयाल हर नाम दिरडाया, तिस प्रसाद वस पंच करे, कव कल ठकुर हरदास तने, गुर रामदास सार अपार परे, अनभव उन्मान अकल लिव लागी, पारस भेटिया सहज करे, सतगुर प्रसाद परम पद पाया, भगत पाए भंडार परे, मेटिया जन्मांत मरण भव भागा, चित लागा संतोख करे, कव कल ठकुर हरदास तने, गुर रामदास सार अपार परे, अपार परे पायो अपार, हृदय अंतर तारियो, दुख भंजन आत्म प्रबोध, मन तत बीचारियो, सदा चाहे हर पाए, प्रेम रस आपे जाने, सतगुर कै प्रसाद सहज सेती रंग माणे, नानक प्रसाद अंगद समत, गुर अमर अमर वरतायो, गुर रामदास कल उचरे, तै अटल अमर पद पायो, संतोख सरोवर बसै, अमै रस रसन प्रकाशै, मिलत शांत उपजै, दुरत दूर अंतर नासै, सुख सागर पायो दिंत, हर मगना हुटै, संजम सत सं

जग जितो सतगुर प्रमाण मन एक त्यायो तन तन सतगुर अमरदास जिन नाम दिरडायो नव निध नाम निदान रिध सिद्धता की दासी सहज सरोवर मिलियो पुरख भेटियो अभनासी आदले भगत जित लग तरी सो गुर नाम दिरडायो गुर रामदास कल उचरे तै हर प्रेम पदार्थ पायो प्रेम भगत प्रवाह प्रीत पुबली ना हुटे सतगुर शब्द अथाह हमें तार

जगत गुर बचन तरायु अवगत अगोचर अपर पर मन गुर शब्द वसायु गुर रामदास कल उच्चरै तै जगत उदाहरण पायो जगत उदाहरण नव निदान भगत है भव तारण अमृत बूंद हर नाम बिस की बिखै निवारण सहज तरोवर फलियो ज्ञान अमृत फल लागी गुर प्रसाद पाई है धन ते जन बड़ भागी ते मुक्त पए सतगुर शब्द मन गुर परचा।

कारण संतोख सराचो सदा सील सनाह सो है। गुरु शब्द समाचरियो नाम टेक संगाद बो है। आजोनियो पल अमल

नास्त गुर जिन को सो प्रसन्न मान अपमान निवारे जिनको गुर सो प्रसन्न शब्द लग पवजल तारे परचो प्रमाण गुर पायो तिन सकियथो जन्म जग श्री गुरु शरण भज कल कब भुगत मुकत सब गुरु लग सतगुर खेमा तानिया जुग जूत समाणी अनुभव नेजा नाम टेक जित भगत आगाणी गुर नानक अंगद अमर भगत हर संग समाणी इहो राज जोग गुर रामदास तुम हूँ रस जानी।

क्रोध खोवै जियो, जियन सभन दाता, अगम ज्ञान बिखियाता, अहन सत्यान तावै, पलक ना सोवै जियो, जा को देखत दरिद्र जावै, नाम सो निदान पावै, गुरमुख ज्ञान दुर्मत मैल तो है जियो, सतगुर नाम एक लिव मन जपै।

हार अकाथ कथन हार तुझ है बुझाई है परम भूले संसार छुट हो जूनी संगार जम को न दंड काल गुरमत त्याई है मन प्राणी मुग्द बीचार अहनस जप धर्म कर्म पूरे सत गुर।

चंदना सुबास जास सिमरत अन तार जाके देखत द्वारे काम क्रोध ही निवारे जी हो बल बल जाओ सतगुर साचे नाम पार राज जोग तखत दीयन गुर रामदास प्रथमे नानक चंद जगत भयो आनंद तारन मनुख जन कियो परगास गुर अंगद दियो निदान कथ कथा ज्ञान पंच भूत बस कीने जमत ना त्रास गुर अमर गुरु श्री सत कल युग राखी पत अघन देखत गत चरण कवल जास सब बिद मान्यो मन तब ही भयो प्रसन्न राज जोग तखत दीयन गुर रामदास रड जिसह धार्यो तरत अर व्योम अर पवन ते नीर सर अवर अनल अनाद कियो सत रेख निस सूर दिन सैल तरु फल फूल दियो सुर नर सप्त समुंदर के धार्यो त्रि भवन जास सोई एक नाम हर नाम सत पायो गुर अमर परगास कच्चो हो कंचन भयो शब्द गुर सरवण है सुनियो बिखते अमृत होयो नाम सतगुर मुख भण्यो लोहो होयो लाल नदर सतगुर जद धारै पाहन माणिक करै ज्ञान गुर कहो बीचारै काठो श्री खंड सतगुर कियो दुख दरिद्र तिनके गए सतगुरु चरण जिन परसिया से पास परेत सुर नर भए जाम गुरु हुए वल तनै क्या गार विधि।

ज्ञान अर ध्यान अनन पर जाम गुरु होए वल शब्द साखी सो सच है घर जो गुरु गुरु अहनस जपै।

गुर बिन घोर अंधार, गुरु बिन समझ ना आवे, गुर बिन सुरत ना सिद्ध, गुरु बिन मुक्त ना पावे, गुर कर

गुर कर शब्द सुपुन अगन कट है सब तेरे, गुर नैन बैन गुर गुर करो गुरु सत कव नल कह, जिन गुरु ना देखो ना हो कियो ते अकियत संसार में, गुरु गुरु गुर कर मन मेरे तारन तरन समरथ कल युग, सुनत समाद शब्द जिस केरे कुन दुखन नास सुखदायक सूरो, जो धरत ध्यान।

जो हर बुद्ध रिद्ध सिद्ध चाहत गुरु गुरु गुर कर मन मेरे गुरु मुख देख गुरु सुख पायो पुती जो प्यास पियूस पिवन की बंशत सिद्ध कहो बिद मलायो पूरन पो मन ठौर बसो रस बासन स्यो जो दहं दिस तायो गोविंद वाल गोविंद पुरी सम जलन तीर बेपास बनायो गयो दुख दूर बरखन को सो गुरु मुख देख गुरु सुख पायो समरथ गुरु फिर हाथ धरियो गुरु कीनी कृपा हर नाम दियो जिस देख चरन अगन हरियो निसबासर एक समान ध्यान सो नाम सुने सुत पान डरियो पान दास सो आस जगतर गुरु की पारस भेट परस करियो रामदास गुरु हर सत कियो समरथ गुरु सिर हाथ धरियो अब राखो दास पाठ की लाज जैसी राखी लाज भगत प्रहलाद की हर नाख चफारे कर आज फुन द्रौपदी लाज रखी हर प्रभ जी सीनत बस्तर दीन बहु साज सोदामा अपदा ते राखिया गनका पढ़त पूरे ते काज श्री सतगुर सो प्रसन्न कल जुगो।

शब्द हर हर जपै नाम नव निध अपै रसन अहनस रसै सत कर जानी ओह हुन प्रेम रंग पाईऐ गुरमुख है त्याईऐ अन मार्ग तजहो भजहो हर ज्ञानी ओह वचन गुर रिद धरहो पंच भू बस करहो जन्म कुल उधरहो द्वार हर मानी ओह ज्यो ता सब सुख इत उत तुम बंचो हो गुरु गुर गुरु गुर गुरु जप प्राणी ओह गुरु गुर गुरु गुर गुरु जप सत कर अगम गुण जान निदान हर मन धरहो ध्यान अहनस करहो वचन गुर हृदय धार हुन गुरु जल बिमल अथाह मज्जन करहो संत गुर सिख तरहो नाम सच रंग सर सदा निरवैर निरंकार निरभउ जपै प्रेम गुर शब्द रस करत दृढ़ भगत हर मुग्ध मन भ्रम तजहो नाम गुरमुख भजहो गुरु गुर गुरु गुर गुरु जप सत कर गुरु गुर गुर करहो गुरु हर पाईऐ उदद गुर गहर गंभीर बेअंत हर नाम नग हीर मन मिलत लिव लाई है हुन गुरु परमल सरस करत कंचन परस मैल दुरमत हिरत शब्द गुर त्याई है अमृत प्रवाह छुटकंत सद द्वार जिस ज्ञान गुर बिमल सर संत सिख नाई है नाम निर्बान निदान हर उर धरहो गुरु गुर गुर करहो गुरु हर पाई है गुरु गुर गुरु गुर गुरु जप मन रे जा की सेवा शिव सिद्ध साधक सुर असुर गण तरह ततीस गुर बचन सुन कान रे हुन तरह ते संत हित भगत गुर गुर करह तरह प्रहलाद गुर मिलत मुन जान रे तरह नारदाद सनकाद हर गुरमुख है तरह एक नाम लग तजोहो रस अन रे दास बेनत कह नाम गुरमुख लह गुरु गुर गुरु गुर गुरु जप मन रे श्री गुरु साहिब सब ऊपर करी कृपा सतयुग जिन ध्रुव पर श्री प्रहलाद भगत उधरियं हस्त कमल माथे पर धरियं अलख रूप।

गुर जहाज खेवट गुरु गुर बिन तरिया ना कोए गुर प्रसाद प्रभ पाई है गुर बिन मुक्त ना होए गुर नानक निकट बसे बनवारी तिन लहना थाप जोत जग तारी लहण पंथ धर्म का किया अमरदास भले कौ दिया तिन श्री रामदास सोडी थिर थप्यो हर का नाम अखै निद अप्यो अप्यो हर नाम अखै निद चहु जुग गुर सेवा कर फल लहीं बंद है जो चरण सरण सुख पाव है परमानंद गुरमुख कहियं प्रतख दे पार ब्रह्म स्वामी आद रूप पोखण भरन सतगुर गुर सेव अलख गत जाकी श्री रामदास तारन तरन जेहे अमृत बचन बाणी साधु जन जप है कर बेचित चाओ आनंद नित मंगल गुरदर्शन सफल संसार संसार सफल गंगा गुरदर्शन परसन परम पवित्र गति जीता है जम लोक पतत जे प्राणी हर जन शिव गुर ज्ञान रते रघुवंश तिलक सुंदर दशरथ घर मुन वंश है जाकी सरन सतगुर गुर सेव अलख गत जाकी श्री रामदास तारन तरन संसार अगम सागर तुल्हा हर नाम गुरु मुख पाया जग जन्म मरन भगा ए आई ही है प्रतीत प्रतीत ही है आई जिन जन कै तिन कौ पदवी उच भई तज माया मोह लोभ अर लालच काम क्रोध की बिरथा गई अवलोकया ब्रह्म भरम सब छुटकिया दिव दृष्ट कारण करन सत गुर गुर सेव अलख गत जाकी श्री रामदास तारन तरन प्रताप सदा गुर का घट घट प्रगास भया जस जन कै एक पढ़ है सुन है गाव है प्रभात है कर है स्नान स्नान कर है प्रभात शुद्ध मन गुर पूजा विद सहत करं कंचन तन होए परस पारस कहो जोत स्वरूपी ध्यान धरं जग जीवन जगन्नाथ जल थल मह रहया पूर बहु विद वर्ण सतगुर गुर सेव अलख गत जाकी श्री रामदास तारन तरन जिन्हो बात निश्चल ध्रुव जानी ते जीव काल ते बचा तिन तरयो समुद्र रुद्र खिन इक मह जल हर बिंब जुगत जग रचा कुंडलनी सुरजी सत संगत परमानंद गुरु मुख मच

देख रूप अत अनूप मोह महामग पई किंकनी शब्द चनतकार खेल पाए जियो काल कलम हुक्म हाथ कहो कौन मेट सकै ईस ब्रह्म ज्ञान ध्यान धरत ही है चाहे जियो सत साच श्री निवास आद पुरख सदा तुही वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे जियो राम नाम परम धाम शुद्ध बुद्ध निरीकार बेशुमार सरबर कौ काहे जियो सुथर चित भगत हित भेख धरियो हर नाख शहरियो नाख बेदार जियो शंख चक्र गदा पदम आप आप कियो शदम अपरंपर पार ब्रह्म लखै कौन ताहे जियो सत साच श्री निवास आद पुरख सदा तुही वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे जियो पीत बसन कुंड दसन प्रिया सहत कंठ माल मुक्त सीस मोर पंख चाहे जियो देव जीर बड़े तीर तर्म अंग अलाख अगम खेल किया अपने उशाहे जियो अकथ कथा कथी ना जाए तीन लोक रहे आसमाए सुतह सिद्ध रूप धरियो साहन कै साहे जियो सत साच श्री निवास आद पुरख सदा तुही वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे जियो सतगुरु सतगुरु सतगुर गोबिंद जियो बलह चलन सबल मलन भगत फलन कान कुवार निहकलंक बजी दंक चढ़ू दल रविंद जियो राम रमन दुर्त दमन सकल भवन कुशल करन सर्वभूत आप ही दिवाद देव सहस मुख फनिंद जियो जन्म कर्म मच्छ काच हो बराहा जमना कै कूल खेल खेलो जिन गिंद जियो नाम सार हिये तार ताजबकार मन गयंद

सिरे तै अगनत तिनको मोह पया मन मद का 84 लाख जोने अपाई रिजक दिया सब हूँ कौ तद का सेवक कै भरपूर जुग जुग वाह गुरु तेरा सब सदका वाहो वाहो का बड़ा तमाशा आपे हसे आप ही चितवे आपे चंद सूर परगासा आपे जल आपे थल थमन।

गुर प्रसाद पाइए परमार्थ, सत संगत सेती मन खचना, किया खेल बड मेल तमाशा, वाहगुरु तेरी सब रचना, अगम अनंत अनाद आद जिस कोई ना जाने, सेव ब्रंच तर त्या

जन मथुरा रस नारस श्री सत नाम करता पुरख गुर रामदास चितह बसे गुरु समरथ गह करिया ध्रुव बुद्ध समत समारन कहो हुन ध्रम तुझा फरंत सदा अग पुंज तरंग निवारन कहो मथुरा जन जान कही जी साच सो और कछु ना विचारन को हर नाम बोहित बड़ो कल मैं भव सागर पार उतारन को संतत ही सत संगत संग सुरंग रते जस गावत है ब्रह्म पंथ धरयो धरनी तरे आप रहे लिव धार ना धावत है मथुरा पन भाग भले उनके मन इच्छत ही।

निर्मल नाम सुधा पर पूरन शब्द तरंग प्रगटत दिन आगर गैर गंभीर अथाह हाथ बड सुभर सदा।

कल युग दुर्त दूर कर बे कहो दर्शन गुरु सगल सुख सागर जां को मन ध्यान धरै फिरत सगल युग कबहु का को पावे आत्म परगास को वेद बाणी सहत बिरंच जस गावे जाको शिव मन गह नात जात कबलास को जां को जोगी जति सिद्ध साधक अनेक तप जटा जूट पेख किए फिरत उदास को सो तिन सतगुरु सुख पाए कृपा धारी जी नाम की बढ़ाई दई गुर रामदास को नाम निदान ध्यान अंतरगत तेज पुंज तिहो लोग परगासे देखत दर्श भटक भ्रम भजत दुख पर हर सुख सहज बिगासे सेवक सिख सदा अत लुभित अल समूह ज्यों कुसुम सुबासे।

हरे माया मद मोहित अमृत नाम दियो समरत हुन कीर्तवंत सदा सुख संपत रिद आर सिद्ध ना छुड है सत दान बड़ो अतवंत महाबाल।

आते संगत सगन पाए पहु मान है, तुम मलयागर प्रगट सुबास, ध्रुव प्रहलाद कबीर त्रिलोचन, नाम लैत उपजो जो प्रगास, जेहे पिखत अत होए रहस मन, सोई संत सहार गुरु रामदास, नानक नाम निरंजन जानियो, किन्नी भगत प्रेम लिवलाई, तांते अंगद अंग संग भयो शायर, तिन शब्द सुरत की नीम रखाई, गुरु अमरदास की अकथ कथा है, एक जी कछ कही ना जाई, सोडी सृष्ट सकल तार

को प्रसन्न फिर आतपत सचो तखत जोग भोग संयुत बल गुरु रामदास सच सल भण तू अटल राज अभग दल तू सतगुर चहो जुगी आप आपे परमेश्वर सुर नर साधिक सिद्ध सिख सेवंत तुरह तुर आद जुगाद अनाद कला तारी त्रिहो लोह अगम निगम अवधर्म जरा जम्मह आरोह।

परमात्मा उस ते राजी हो जाता है, ईश्वर अकाल पुरख उस ते राजी हो जाता है। तो जिस ते ईश्वर राजी हो गया है, समझ लो उस ते जहान राजी हो गया। गुरु नानक देव जी महाराज का फरमान, एक सज्जन सब सज्जना, एक वैरी सब बाद। जे एक सज्जन बन गया तो सारा संसार सज्जन बन गया, जे एक नाल कोई संबंध नहीं तो फिर जगत दे जर्रे जर्रे नाल संबंध टूटिया होया है, ते गलियां दे कख भी फिर जो है वैरी ने। तो जिहड़ा उसकी रजा दे चलदा है परमात्मा उससे राजी हो जाता है, ते परमात्मा जिससे राजी हो जाता है वो माला माल हो जाता है, वो खुशहाल हो जाता है और वो दुनिया का अजीम तरीन मनुख बन जाता है। अगला श्लोक गुरु अंगद देव जी महाराज का और वो इस तरह फरमान कर दे। महला दूजा।

आस्था दीवार दी ये जो दूजी पौड़ी है इस जो तीन श्लोक ने तीजा श्लोक साहिब श्री गुरु अंगद देव जी महाराज का जिस विच आप फरमान करते ने यह जग सच्चे की है कोठड़ी सच्चे का विचवास समूह संसार परमात्मा दे रहन दा घर है। इस कोठी दे व्यापक रूप हो रहे बनस्पति सागर ग्रह नक्षत्र रेत दे जर्रे तो लैके सूरज दियां किरणा हाथी कीट पहाड़ पाताल आकाश जिथे तक निगाह जाती है और जो अदृश्य दुनिया है इस सारा जगत ये सारा ब्रह्मंड उस अकाल पुरख दे रहन दी थां है। कोई विशेष ठिकाणा परमात्मा का नहीं है भी फलानी थां ते है तो इसका मतलब है इस थां ते नहीं है। दो शब्द परमात्मा प्रति

भाई जाना मेरे भाई जाना मेरे भाई जाना मेरे भाई जाना मेरे भाई जाना।

0: सर संग सहई।
1: यार नीत सुन साजन यार नीत सुन साजन बिन हर कीर्तन नाहे नानक सह बंधन।

सतगुरु गोविंद सिंह का है, सतगुरु गोविंद सिंह का है, सतगुरु गोविंद सिंह का है।

कर कृपा अपने प्रभु पीए कर कृपा अपने कर कृपा अपने प्रभु पीए कर हर चाला जपन को दिए हर चाला जपन को दिए वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु हर काना जपन को दिए हर काना जपन को दिए आठ पहर

मन तन बसिया हर पल सोई, मन तन बसिया कल कलेश किछ बिघन न होई, कल कलेश किछ बिघन न होई। सदा सजा प्रभ की कै संग, सदा सजा

पाया अमृत गुर कृपा कीनी, सच्चा मन बसाया जी जंत सब शुद्ध उपाए, एक वेख परतन आया लब लोभ अहंकार चूका सतगुर भला।

हम मूर्ख अज्ञान ज्ञान किस नाही सतगुरु ते समझ पड़ी मन माही तन गुरु को विन सिंह

0: बिन पाका ऐसा सतगुरु ना पाई है,
1: बिन पाका ऐसा सतगुरु ना पाई है,
0: बिन पाका।

0: जन्म मरण दुख जाय हो गए सब तक संबंधी नूरे अरसों पुरसों चटिया
1: तो जिथे

सद्गुरु प्रसाद श्लोक आदि पूर्ण मध्य पूर्ण अंत पूर्ण परमेश्वर सिमरंत संत सर्वत्र रमणं।

अंतपूर्ण परमेश्वर सिमरांत संत सर्वत्र रमण नानक अगनाशन जगदीश्वर देखन सुनन सुनावन मन मह दृढ़ साच पूर रहे हो सर्वत्र मैं नानक हर रंग राच पौड़ी हर एक निरंजन गाइए सब अंतर सोई कारण कारण समरथ प्रभ जो करे सोई किन मह थापो थापदा तिस बिन नहीं कोई खंड ब्रह्मंड पाताल दीप रविया सब लोई जिस आप बुझाए सो बुझसी निर्मल जन सोई खंड ब्रह्मंड पाताल दीप रविया सब लोई जिस आप बुझाए सो बुझसी निर्मल जन सोई। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी के फतेह। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। जप जी साहिब एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरपौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैप गुरप्रसाद जप आद सच जुगाद सच है पी सच नानक हो सी पी सच सोचै सोच न हो वही जे सोची लखवार चुपै चुप न हो वही जे लाए रहा लगतार भुख्या भुख न फरी जे बुना पुनिया पार सहस स्याणपा लख हो है ता एक न चलै नाल किव सुचियारा होई है किव कूड़ै टुटै पाल हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल हुक्मी होवन आकार हुक्म न कहिया जाई हुक्मी होवन जी हुक्म मिलै बड़ियाई हुक्मी उत्तम नीच हुक्म लिख दुख सुख पाई है एक न हुक्मी बख्शीश एक हुक्मी सदा पवाई है हुक्मै अंदर सब को बाहर हुक्म न कोई नानक हुक्म जे बुझै तो हुम कहे न कोई गावै को ताण होवै किसै ताण गावै को दात जाने निशान गावै को गुण बड़ियाइयां चार गावै को विद्या विखम विचार गावै को साज करे तन के गावै को जी लै फिर दे गावै को जापै दिसै दूर गावै को वेखै हादर हदूर कथना कथी न आवै टोट कथ कथ कथी गोटी गोट कोट देंदा दे लेंदे तक पाही जुगा जुगंतर खाही खाही हुक्मी हुक्म चलाई राह नानक विगसै बेपरवाह साचा साहेब साच नाए पाख्य पाव अपार आखे मंगै देह दे दात करी दातार फेर के अगै रखी है जत दिसै दरबार मोह के बोलन बोलिए जत सुन तरे प्यार अमृत वेला सच नाउ बड़ियाई विचार करमी आवै कपड़ा नदरी मोख द्वार नानक ए वै जानिए सब आपे सच्यार थाप्या न जाए कीता न होए आपे आप निरंजन सोए जिन सेव्या तिन पाया मान नानक का वी है गुणी निदान गावीऐ सुनिए मन रखिए भाउ दुख पर हर सुख पर लै जाई गुरमुख नादम गुरमुख वेदम गुरमुख रहे आसमाई गोरी सिर गुर गोरख ब्रह्मा गुर पार्वती माई जे हों जाना आखा नाही कहना कथन ना जाई गुरा एक देह बुझाई सबना जिया कायक दाता सो मैं विस्तर न जाई तीर्थ नावा जे तिस पावा बिन पाने के नाई करी जे ती सिर ठो पाई वेखा बिन कर्मा के मिलै लई
ਮਾਤ ਵਿੱਚ ਰਤਨ ਜਵਾਹਰ ਮਾਣਿਕ ਜੇ ਇੱਕ ਗੁਰ ਕੀ ਸਿੱਖ ਸੁਣੀ ਗੁਰਾ ਇੱਕ ਦੇਹ ਬੁਝਾਈ ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਕਾ ਇੱਕ ਦਾਤਾ ਸੋ ਮੈਂ ਵਿਸਰ ਨਾ ਜਾਈ ਜੇ ਜੁਗ ਚਾਰੇ ਆਰ ਜਾ ਹੋਰ ਦਸੋਣੀ ਹੋਏ ਨਵਾਂ ਖੰਡਾ ਵਿੱਚ ਜਾਣੀ ਹੈ ਨਾਲ ਚੱਲੇ ਸਭ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਨਾਉਰ ਕਾਏ ਕਹੇ ਜਸ ਕੀਰਤ ਜਗ ਲੇ ਜੇ ਤੈਸੋ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਵਈ ਤਾਂ ਬਾਤ ਨਾ ਪੁੱਛੇ ਕੀਟਾਂ ਅੰਦਰ ਕੀਟ ਕਰ ਦੋਸ਼ੀ ਦੋਸ਼ ਧਰੇ ਨਾਨਕ ਨਿਰਗੁਣ ਗੁਣ ਕਰੇ ਗੁਣਵੰਤਿਆ ਗੁਣ ਦੇ

मूत बलिती कपड़ होए देसा गूण लिया होए परिया मत बाबा के संग ओ तो पहनावे के रंग पुन्नी पापी अखण नाही कर कर करना लिख लै जा आपे बीज आपे ही खा नानक हुक्मी आवा जा। तीर्थ तप दया दत्त दान जेको पावे तिलका मान सुनया मनया मन कीता भाउ अंतरगत तीर्थ मल नाउ सब गुण तेरे मैं नाही कोए बिन गुण कीते भगत न होए सो आसे आद बाणी भरमाऊ सत सुहावन सदा मन चाओ कवन सुवेला वक्त कवन कवन थित कवन वार कवन सिरुति महा कवन जिथो आकार वेल न पाईया पंडती जे होवै लेख पुराण वक्त न पायो कादियां जे लिखण लेख कुराण थित वार न जोगी जाने रुत माह न कोई जा करता सिर ठीक हो साजे आपे जाने सोई किव कर आखा किव सलाही क्यों वरनी किव जाना नानक आखण सब को आखे एक दू एक सियाणा वड्डा साहेब वड्डी नाही कीता जा का होवै नानक जे कहो आपो जाना अगे गया ना सोहै पाताल पाताल लख आगासा आगास उड़ कोड़ कपाल थके वेद कहन एक बात सहस अठारह कहन कतेबा सलु एक तात लेखा हुए त लिखी है लेखा हुए बिनास नानक वड्डा आखी है आपे जाने आप सालाही सालाह इति सुरत न पाईया नदियां तै वह पवह समुद न जानी है समुद शाह सुल्तान गिरह सेती माल धन कीड़ी तुल न होबनी जे तिस मनो न विसरै अंत न सिवती करण न अंत अंत न करण देण न अंत अंत न वेखण सुन न अंत अंत न जापै क्या मन मंथ अंत न जापै कीता आकार अंत न जापै पारावार अंत कारण केते बिल लाहे ताकि अंत न पाए जाहे यही अंत न जाने कोई बहुता कहिए बहुता होए वड्डा साहेब ऊंचा था ऊंचे ऊपर ऊंचा नाउ एवड ऊंचा होवै कोए तिस ऊंचे को जाने सोए जेवड़ आप नानक नदरी करमी दात बहुता कर्म लिखा न जाए वड्डा दाता तिल न तमाए केते मंगह जो दारू केत्या गणत नहीं बिचारू केते खबत टैम बेकारू केते लै लै मुकर पाहे केते मूर्ख खाही खाए केत्या दुख बहु सद मारू हे बेदात तेरी दातारू बंद खलासी पाण होए हो राख न सकै कोए जे को खाए को आखण पाए ओ जाने जितिया मुँह खाए आपे जाने आपे दे आखे से पे कही के जिसनो बख्शे शब्द सलाह नानक बादशाही बादशाह अमुल गुण अमुल व्यापार अमुल व्यापारी अमुल भंडार अमुल आवहे अमुल लै जाहे अमुल पाए अमुला समाहे अमुल धर्म अमुल दीवान अमुल तुल मुल प्रवान अमुल बख्शीस अमुल निशान अमुल कर्म अमुल प्रमाण अमुल अमुला क्या न जाए आख आख रहे लिवलाए आख है वेद पाठ पुराण आख पढ़े करे बख्याण आख ब्रह्मे आख अंध आख गोपी तय गोविंद।

இருக்கிறாரே. गावन पंडित पढ़न रखी सर युग युग वेदानाले गावे मोहनिया मन मोहन सुरगा मश पयाले गावन रतन उपाय तेरे आठसठ तीर्थ नाले गावे जोध महाबल सूरा गावे खाणी चारी गावे खंड मंडल वर पंडा कर कर रखे तारी

दुख शरम पद जोड़ी ध्यान की करें बेभूत खिंथा काल कुआरी काया जुगत डंडा प्रतीत आई पंथी सगल जमाती मंजित है जग जीत आदेश तथा आदेश आद अनिल अनाद अनाहत युग युग एक वेश भुगत गया दया भंडारण गड़गड़ बाजै नाद आप नाथ नाथी सब जानकी।

जुग जुगे को वेश एका माई जुगत वे आई दंजले परवान एक संसारी एक भंडारी एक लाए दीवान जब तिस भावै तिवै चलावै जिव होवै फरमान।

दीपो लख हो है लख वै लख वीश लख लख गेड़ा आखी है एक नाम जगदीश एक राह पत पवड़िया चढ़िया हो अकीश सुन गल्ला आकाश की गीता आई रीस नानक नदरी पाई आए गूढ़ी गूढ़ा ठीस आखण जोर च पहन है जो

नानक तुम नीच ना कोए। राती रोती थिती वार, पवन पानी अग्नि पाताल, दस विच धरती थाप रखी धर्मशाल।

तथा सोवन पंच प्रवाण नदरी कर्म पवै निशान कच पकाई उथ पाए नानक गया जापै जाए धर्म खंड का यो धर्म ज्ञान खंड का खो कर्म केते पवन पाणी वै संतर केते कान महेश केते वरमे काढ़त घड़ी है रूप रंग के वेश केतियां कर्म भूमि मेर केते केते तू उपदेश केते इंद चंद सूर केते मंडल देश केते सिद्ध बुद्ध नाथ केते देवी वेश केते देवदान मन केते रतन समुंद केतिया खाणी केतिया बाणी केते पात नरिंद केतिया सुरती सेव केते नानक अंत नयंत ज्ञान खंड में ज्ञान प्रचंड तिथे नाद विनोद कूड आनंद शर्म खंड की बाणी रूप तिथे घाट घड़ी है बहुत अनूप ताकियां गल्लां कथियां न जाए जे को कह पिछे पछताए तिथे घड़ी है सुरत मत मन बुद्ध तिथे घड़ी है सुरस दंकी शुद्ध कर्म खंड की बाणी जोर जिथे होर ना कोई होर जिथे जोध महाबल सूर दिन मैं राम रहे भरपूर तिथे सीतो सीता मैं माहे ताके रूप ना कथने जाहे ना हुम रहे न ठग जाहे जिन कह राम बसे मन माहे तिथे भगत बसै के लो करहे आनंद सचा मन सोए सच खंड बसै निरंकार गर कर वेख नजर निहाल तिथे खंड मंडल बरपंड जी।

गत मित बार गुरगन उदार मुनगन प्रणाम निरपै ने काम अत दुत प्रचंड मित गत अखंड अलिश कर्म दृष्ट धर्म सर्वा प्रणाढ़ आन डंड बाडे चाचरी छंद तव प्रसाद गोबिंदे मुकंदे उधारे अपारे हरियंग करियंग नामे अकामे भुजंग प्रयात छंद चतर चकर करता चतर चकर हरता चतर चकर दाने चतर चकर जाने चतर चकर वरती चतर चकर भरती चतर चकर पाले चतर चकर काले चतर चकर पासे चतर चकर वासे चतर चकर माने आए चतर चकर दाने आए चाचरी छंद ना सत्रह न मित्र न परमंग न पितरह न कर्मंग न काय जन्मंग अजाई न चित्रह न मित्र परे पवित्र प्रतिशा दिशा दृशा कृषय भगवती छंद तव प्रसाद कथते क्या सज देसा क्या बिज बेसा क्या गंज कर्म है क्या पंज परम है क्या बिज लोक है क्या दत सुख है क्या बदूत वर्ण है क्या विभूत करण है क्या राजंग प्रभा है क्या धर्मंग तुझा है के अशोक वर्ण है कि सर्वा भरण है कि जगतंग कृति है कि शतरंग क्षत्रिय है कि ब्राह्मण स्वरूप है कि अनुपम रूप है कि आदि देव है कि आप अपेव है कि चित्रंग विहीन है कि कह दीना है कि रोजी रजा कह रही मिरहा कह के पाक बेअब है कि गैबुल गैब है कि आफुल गुनाह है कि शान शाह है कि कारण गुनंद है कि रोजी दहद है के राज करीम है के कर्मंग करीम है के सर्वंग कली है के सर्वंग दली है के सर्वत्र माने आए के सर्वत्र दाने आए के सर्वत्र गाउन है के सर्वत्र पावन है के सर्वत्र देशा है के सर्वत्र पेशा है के सर्वत्र राज्य है के सर्वत्र साजा है के सर्वत्र दीन है के सर्वत्र लीना है के सर्वत्र जाहो के सर्वत्र पाहो के सर्वत्र देशा है के सर्वत्र पेशा है के सर्वत्र राजा है के सर्वत्र साज है के सर्वत्र देशा है के सर्वत्र पेशा है के सर्वत्र काल है के सर्वत्र पाल है के सर्वत्र हंता के सर्वत्र गंता के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र काज है के सर्वत्र राज है के सर्वत्र सुख है के सर्वत्र भूख है के सर्वत्र त्राण है के सर्वत्र प्राण है के सर्वत्र देश है के सर्वत्र पेश है के सर्वत्र माने आए सदैव प्रधान है के सर्वत्र जापे आए के सर्वत्र थापे आए के सर्वत्र भान है के सर्वत्र मान है के सर्वत्र इंद्र है के सर्वत्र चंद्र है के सर्वंग कलीम है के परमंग भीम है के आकलोलाम है के साहब कलाम है के उसनो बजू है तमाम दरजू है हमे सुलसलाम है सलीख तमदाम है गनीमल सकाश है गरीब उल परस्त है बुलंदल मकान है जमीन उल जमान है तमीज उल तमाम है रुजू उल नदान है हरी फल अजीम है रजाय कशीना अनेक उल तरंग है पेद है पंग है अजीज उल निवाज है गनीमल खराज है निरुक्त स्वरूप है त्रिमुक्त बभूत है परभुगत प्रभा है सुजगत सुधा है सदैव स्वरूप है बेदी अनूप है समाजतु ब्राज है सदा सर्वसाज है समाज तुल सलाम है सदैव लकाम है निर्बाद स्वरूप है गाध है अनूप है अंगाद रूप है नाद स्वरूप है अनंगी अनामे त्रिपंगी त्रकामे त्रिवर्गं त्रिवादे गंजे गादे सुभंग सर्वभागे सुसर्वा नरागे त्रिपुत स्वरूप है सजय शूद है कि नरगं प्रणास है प्रतिउल प्रवास है निरुक्त प्रभा है सदैव सदा है विभुक्त स्वरूप है प्रजुक्त अनूप है निरुक्त सदा है विभुक्त प्रभा है अनुक्त स्वरूप है प्रजुक्त अनूप है चाचरी छंद अपंग है अनंग है भेख है लेख है परम है कर्म है अनाद है जुगाद है अजय है बह भूत है दूत है अनाश है दास है तंद है बंध है अभगत है विरक्त है अनाश है प्रकाश है नजंत है सुनंत है लेख है देख है अलेख है पीख है टहा है गाय असंभ है गम है अनिल है अनाद है अनत है सुनत है जात है जाद है चरपट छंद तव प्रसाद सर्वं हंता सर्वं गंता सर्वं ख्याता सर्वं ज्ञाता सर्वं हरता सर्वं कर्ता सर्वं प्राणं सर्वं त्राणं सर्वं कर्मं सर्वं धर्मं सर्वं जुगता सर्वं मुक्ता रसावल छंद तव प्रसाद नमो नरक नाशे सदैव प्रकाशे अनंगं स्वरूपे अपंगं बभूते ब्रह्मादिं ब्रह्माथे सदा सर्वसाथे अगाध स्वरूपे निर्बाध बभूते अनंगी अनामे त्रिभंगी त्रकामे निरभंगी स्वरूपे सर्वंगी अनूपे न पुत्र न पुत्र न सत्र न मित्र
न ताता न माता न जाता न पाता है नरसाकं श्री कै मितो मीकाय सुदैवं प्रवाह जय अजाय भगवती शंद तक प्रसाद के जहर जूर है के हाजर है जूर है हमेशा सलाम है समासल गुलाम है के साहब दिमाग है के उसन चिराग है के कामल करीम है के राज करीम है के रोजी रहंद है के राज करहंद है गरीबल कमाल है के उसन जमाल है गरीबल खराज है गरीबल नवाज है हरीफुल सिकन है रास लफकन है कलंकंग प्रणास है समाज तल निवास है गंजलुक नीमा रजाय कर रही माए समाज तल जवाह के साहब गराय के नरकंग प्रणास है बहस तल निवास है।

मी कल माह है, क्रीम कमाल है कि जरूरत जमाल है कि अचलंग प्रकाश है कि मितो सुभाष है कि अज विस्वरूप है कि मितो बभूत है कि अमितो पसा है कि मितो ब्रवा है कि अचलंग अनंग है। के अमितो अपंग है मद पार छंद दव प्रसाद मन मन प्रणाम गुण गण मुदाम हर भर गंज हर नर पर पांज अन गण प्रणाम मुन मन सलाम हर नर खांडू भर नर मांडु अनुपवनाश मुन मन प्रकाश गुण गण प्रणाम जल धर्म धाम आन सिज अंग आसन अपंग उपमा पार गात मित उदार जल थल मांड दिस विस अपंड जल थल महंत दिस विस बेअंत अन पवन आशु तिरत धरत रास आजन बाह ई कै सदार ओंकार आदि कथनी अनाद खलखंड ख्याल गुरबर अकाल कर कर प्रणाम चित चरण नाम अंश जगात अज जिना बात अंचन जगात अनरंज बात अन टुट भंडार अन ठट अपार अडीठ धर्म अतडीठ कर्म अणब्रण अनंत दाता महंत हर बोल मना छंद दव प्रसाद करुणालया है हर कालया है कल खंडन है मह मंडन है जगतीश्वर है परमेश्वर है कल कारण है सर्वोभारण है त्रैत के तरण है जग के करण है मन मान्य है जग जान्या है सर्वं पर है सर्वं कर है सर्वपाश्य है सर्वनाश्य है करुणा कर है विश्वम्बर है सर्वेश्वर है जगदीश्वर है ब्रह्मांड से है खलखंड से है बरते पर है करुणा कर है जप जप है थप है अकृता कृत है।

अमृतेश्वर है, परमेश्वर है, या कृता कृता अमृत अमृत है, अजबा कृता है अमृत अमृत है, नरनायक है कल कायक है, विश्वम्बर है करुणालय है, निरपनायक है सर्वपायक है, बहुपंजन है हर गंजन है, रिप तापन है जप जापन है, अकलंकृत है सर्वाकृत है, कर्ता कर है हरता हर है, परमात्मा है सर्वात्मा है, आत्मवास है जस के जस है, पुजंग प्रयात शंभ, नमो सूर्य सूर्ये, नमो चंद्र चंद्रे, नमो राज राजे, नमो इंद्र इंद्रे, नमो अंधकारे, नमो तेज तेजे, नमो बृंद बृंदे, नमो बीज बीजे, नमो राज संग ताम संग शांत रूपे, नमो परम तत्ंग तत्ंग स्वरूपे, नमो योग योगे, नमो ज्ञान ज्ञाने, नमो मंत्र मंत्रे, नमो ध्यान ध्याने, नमो युद्ध युद्धे, नमो ज्ञान ज्ञाने, नमो भोज भोजे, नमो पान पाने, नमो कलह कर्ता, नमो शांत रूपे, नमो इंद्र इंद्रे नादिंब भूते, अलंकार रूपे अलंकार अलंके, नमो आशासे, नमो बांक बंके, अपंगी स्वरूपे अनंगी अनामे, दृपंगी दृकाले अनंगी अकामे, एक आचरी शांत, अजय अलय भया भय पूव जू अनास आकाश, अगंज पंज लख पख, अकाल दयाल लेख पेख, अनाम काम घाट, अनाथि परमाथि अजूनी अमोनि, नारागे न रंगे न रूपे न रेखे, अकर्मंग परमंग अगंजे अलेखे, भुजंग प्रयात छंद, नमास्तल प्रणामे समास्तल प्रणासी, अगंजलो नामे समास्तल निवासी, नृकामंग बभूते समास्तल स्वरूपे, गुकर्मंग प्रणासी सुकर्मंग बभूते, सदा सचदानंद सतरंग प्रणासी, करीमल करिंदा समाज तुल निवासी, अजायब बभूते अजायब गनीमय, हरियंग करियंग करीमल रहीमय, चतर चक्र भरते चतर चक्र भुगते, स्वयंभव शुभंग सर्वदा सर्वजुगते, दुकालंग प्रणासी दयालंग स्वरूपे, सदांग संगे अपंगंग बभूते, चतर चक्र भरती चतर चक्र भुगते, स्वयं पव शुभं सर्वदा सर्वजुगते, दुकालं प्रणासी दयालं स्वरूपे, सदांग संगे अपंगं बभूते, सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीयो, तव प्रसाद सवैये को ओंकार, सतगुर प्रसाद तव प्रसाद सवैये पातशाही दशमी, श्रावक शुद्ध समूह सुधान के, देख बिरे कर जोग जति के, सूर सुरार्दन शुद्ध सुधा देख, संत समूह अनेक मति के, सारे ही देश को देख रहे हो, मात को न देखे प्राण पति के, श्री भगवान की पाय कृपा हूँ ते, एक रति बिन एक रति के, मातिम दंग जर जर संग, अनूप दंग सुरंग सवारी, कोट दुरंग करंग से कूदते, मौन के गौन को जात नवारी, पारी पजान के पूप बली बद, न्याव सीसना जात विचारे, ये पाए तो कहाँ पर पूत, अंत को नंग ही पाए पधारे, जीत पर सब देश दिशान को, बाज चटोल मृदंग नगारे, गुंजत गुड़ गजान के सुंदर, हंसत है हजराज हजारे, पूत भवैख भगवान के पूपत, कौन गने नहीं जात विचारी, सरी पात सरी भगवान पजे बिन, अंत को अंत के धाम सुधारी, तीर्थ नहान दमदान, सुसंजम नेम अनेक वसेख, वेद पुराण देव पुराण, जमीन जवान सुवान कपेख, पौन आहार जति जतार, सब सुख चार हजार के देख, श्री भगवान भजे बन भूपत, एक रति बन एक न लेख, शुद्ध सुबह आदुर अंत दबा, सुशासन आदुर जान दलेंगे, भारी गुमान परे मन मैं कारु, पर्वत पंखा लेना लेंगे, तोर अरीन मरोर मवासन, मातिम दंगर मान मरेंगे, सरी पद सरी भगवान कृपा बेनु, त्याग जहान दान चलेंगे, वीर पार बड़े बर यार, अबचारे सार की दार बशैया, दूर तो देश मलेंद मवासन, माते गजान के मान मलैया, गाड़े गुडान को तोड़ नहार, सुबात नहीं जग चार लवैया, साहिब श्री सब को सरनायक, जाचका नेक सो एक दवैया,

को पूजनतायो पूर करया और ज्यो सभी जग श्री भगवान को भेद न पायो सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ पातशाही दसवीं कबाज बेनती चौपई हमरी करो हाथ रक्षा पूर्ण होए जित की इच्छा तब चरणन मन रहे हमारा अपना जान करो व्रत पारा हमरे दोष सब तुम कावहो आप हाथ दय मोहि बचावहो सुखी वसै मोर परिवार सेवक सिख सब करतार मोह रक्षा निज कर दय करे आए सब वैरन कौ आज सिंगरे आए पूर्ण होए हमारी आसा तोर भजन की रह प्यासा तुम्हें शाड़ कोई अबर न त्याऊं जो बर चाहूं सु तुम ते पाऊं सेवक सिख हमारे तारी है जन चन सतर हमारे मारी है आप हाफ दे मुझे उभरे आए मरण काल का त्रास निवरे आए हूँ जो सदा हमारे बच्चा श्री अस्तोजु करे हो रक्षा राख ले हम रख नहारी साहिब संत सहाय प्यारे दीन बंद दुष्टन के हंता तुम हो पुरी चतुर्दश कंता काल पाई ब्रह्म बबदरा काल पाई शिवजु अवतरा काल पाई कर विष्णु प्रकाशा सकल काल का किया तमाशा

जबन काल सब जगत बनायो देव दैंत जशन उपजायो आदि अंत एक अवतार सोई गुरु समझियो हमारा नमस्कार दसी को हमारी सकल प्रजा जन आप सवारी शिव गण को शिव गुण सुख

बहावर राज दीनी काहू भूल राजा आवा बैठा कहू समट बहु शंकर बैठा सकरी श्रेष्ठ दिखाए जम पव आज जगाद स्वरूप से जम पव अब रक्षा मेरी तुम करो सिखो बार सिख संग्रो दुष्ट जदि उठव दुत पाता सकल मलेश करो रण काता जे अस तुज तब शरणी परे तिनके दुष्ट दुख तब मरे पुरख जवन पग परे तिहारे तिनके तुम संकट सब टारे जो कल को एक बार ते आए हैं ताके काल निकट नह है रक्षा हुए ताय सब काला दुष्ट रिष्ट रहें तत काला।

कर दी बीरा मैं हो गई वासुदाइया। नानक राम कर दी बीरा ते मैं हो गई वासुदाइया। फिरा ढूंढी रो रो

सन्यासी को जोगी पयो को ब्रह्मचारी को जति अनुमान लो हिंदू तुर्क को राज जी इमान।

आतिश ओ आग तोड़ लाओ है अनुपेक कोई पुराण ओ पुराण होई एक ही स्वरूप सबो एक

कहीं बेल के बजिए, कहीं तेल के चढ़िए, कहीं लखन लवैया, कहीं सुंदर कुमार हो,

0: अस्त्र के चलाइए
1: रंग केड़े रंग अंत खेल दे
0: अस्त्र के चलाइए छत छत के तरहिया छत्रकारी।

सरगर तुम्हें व्याप्रियो सब देश व्याप्रियो सब देश सब जूनन में रब रहा ऊंच नीच के देश पूर्वी न पार पावे हिंगुला हमाला त्यावे गौर गर्दे की गुण गावे तेरे नाम है जोगी जोग साधे कौन साधना कसे बवादे अर्ब के अरबी आराधे तेरे नाम है हरा के खरंगी माने कंधारी कुरेसी जाने पश्चिम के पश्चिमी पहचाने निज काम है मरहटम गेले तेरी मन से उत्पन्न

सन्यासी को जोगी पयो को ब्रह्मचारी को जति अनुमान लो हिंदू तुर्क को हराफ जी इमाम साफी मानस की जात सबे एक पहचान लो करीम सोई करते करीम सोई हराजक रहीम ओही दूसरों न भेद कोई तूल परम मान वो एक ही की सेव सभी को गुरुदेव एक

सब जगत में व्याप्रियो सब देश व्याप्रियो सब देश सब जूनन में रब रहा ऊंच नीच के भेस पूर्वी ना पार पावे सिंगला हमाला त्यावे गौर कर दे जी गुण गावे तेरे नाम है जोगी जोग साधे कौन साधना किसे बवा दे अरब के अरबी आराधे तेरे नाम है थरा के थरंगी मानी संधारी कुरेसी जाने पश्चिम के पश्चिमी पहचाने निज काम है मृहत्तम गेले तेरी मन से उत्पस्या कर।

जाके बिजित पोत मृतका गृह में रहन ना पाई। प्रभु स्वामी कंतरी उड़िया मीत सजा।

che Sadaggi possono riprometti perché non è appena perché la prima punta di letti la avere l'era molto nel cucciolo di tutti che è sottera l'era tutto forte che ha la tenera sotto con gli altri neri vedi se ti hai fatto se vai di dare se io se di dare उसने बख्शिश की थी कि मैंने उसे का बनाया इधर उसका मतलब भी होता है जिसे फिर गुस्सा के अंदर निवर कहा जाती है जिसका अंदर तो फल लगा सकता है वो चुक जाता है दुनिया हो जाता है जिन्हें फल लगा उन्हें गत नहीं आता है काले नीले हो जाते हैं फिर लोग की फल लेंगे इसी तरह ही है इस गुस्सा के अंदर इसी तरह निम्र साहेब देवान से लिख के लाया गया कि आख्या की एक शब्द ही शब्द का ध्यान नहीं करना सत्संगियों आपसे कीर्तन करो सारे रंग की उच्ची आवाज न प्यार के सत्कार मारे गुरु की आंखों

इतनी चीजें कुछ गोल चित्र वगैरह सब ठीक हर बार इंसान वास्ते है ये रोग का बढ़ जाना है इस बात से प्रकार।

देख साथ पाई तो लग दे बस करे जे प्रसाद कपूकम चाहिए ऑपरेशन कपड़े जिसम तक प्राप्त है उसका अंदर चलन रखा हुई सारी चीजें जय प्रसाद।

अपनी अहंता त्याग के अपने मैं मेरी त्याग के योगा रूप हो जाइए। सेवा रूप की आस्था है।

निर्भरता सत्कार से प्यार और सारे आंखों तो आगे आधा समारी सब तेरा कौन आने सब तेरी बजाई।

वाइफ उस सिंगा समेत चमकौर वालू चले गए। गुरु साहब दे महल भाई मणि सिंह जी दे नाल दिल्ली वालू चले पा गए। माता जी अते दो छोटे साहिबजादे जिन्ना मुखी सिंगा दी देख रेख हेठ सन सन ओह शहीद हो गए, कई बिछड़ गए। माता जी अते दो छोटे साहिबजादे बिखरा पेंडा तय करदे होए जंगलां विच तुरे जांदे हन। पैरां विच कंडे वज वज के खून निकल आया। जिद्दां दी लंघदे ने धरती दी छाती उत्ते मेहंदी लगदी जा रही है। बच्चे पुछ रहे ने, माता जी साडी बेबे किधर गई है, साडे पिता जी किधर गए ने, बड़े वीर भी नजर नहीं आंदे, आपा घर नूं कदों पजावांगे। साहिबजादे माता जी तो सवाल इहो पुछदे ने।

दरवाजे एक मनुखी आकार नजर आया। माता जी ने आवाज मारी, जान वाला रुक गया। जब माता जी कोल पहुंचे तो उन्होंने देखा कि ये तो मेरे काफले साढ़े घर का गंगू राम रसोईया है, जो वरिया तो घर की रसोई करता आ रहा है। माता जी अते साहब जाना की ए हालत देख के गंगू राम पिघल गया। कह लगा, माता जी मेरा पिंड खेड़ी इथो नेड़े ही है, मेरे घर चलो, जदो हालात सुखावे हो जाएंगे मैं गुरु साहब की भाल करके आप जी नु ओना तक पहुंचा देंगा। गंगू माता जी अते साहबजादे नु लेके अपने पिंड वालू हो तुरिया। पावन बाणी का फरमान है, कबहु जेड़ा ऊब चढ़त है कबहु जाए प्याले, लोभी जेड़ा थिरना रहत है चारे कुंडा पाले। गंगू का मन बदल गया, माया नागली ने डंग मारिया, उडारिया मारदा मन आखिर गर्कन नुकन नु आ गया। गंगू का मन हुण गंगा दे पानी वांग निर्मल ना रह के एक गंदे छप्पड़ की तरह बन गया। लोभ लालच ने मत मार ली। सोचन लगा, माता जी को एक माया की खुर्जी है, जे चुस्ती करा तो आम आदमी हजम कर लवा ते सरकार तो काफी इनाम भी मिल जाएगा। दोहा हत्था विच लड्डू ने तेरे इना पुन्ना पापा ने चक्कर विच ना पाए। ए सोच के गंगू ने धन की खुर्जी किते होर लगा दिती अते अद्धी राती चोर चोर दा रोला पाना शुरू कर दिता। जदों माता जी ने कहा, गंगिया मैं तो जागदी पई हां, इत्थे आया ही कोई नहीं, तां तू रख लै असी की करना है, पर ए चितराइयां तैनू सोवदियां नहीं। ए सुन के गंगू उच्ची उच्ची रोला पाउन लगा, मां जो सरकार दे बागियां नू घर लिया के पनाह दिंदा है, तुसी तां जानदे ही हो उसका की हशर हुंदा है। मैं तो आप अपनी मौत से हेड़ बैठा हाँ, जेकर सरकार नू इस गल दा पता लग गया तां मैनू कोले विच पीर देवेगी। ए रोला पाउंदा होया गंगू पापी शहर मरिंडे पुलिस कोल पहुंच गया। शहर मरिंडे पहुंच गया कुल पंध मुका के, जानी खाते मानी खानु कह सुना के, दो पुत्र गुरु गोविंद दे मैं आया भाके, एक माता दशमेश जी तुसी फालो जाके। ए गल सुन के पुलिस दे सिपाही जानी खाते मानी खाने माता जी अते साहिबजादे नु हथकड़ियां लगा दितियां अते शहर मरिंडे वालू लै तुरे। वजीर खान की कचहरी लगी हुई है, साहिबजादे नु कचहरी विच पेश किया गया। जालिम हुकूमत ने साहिबजादे नु अनेक तरह के लालच अते डरावे दिते, राजभाग दा लालच, हूरां दे डोलियां दा लालच, पर बच्चे ने इन्हां सारे लालचां ते डरावियां नु अपनी जुत्ती नोक ते है क्यों चुकरा।

मदी एक आसुन के वजीर खान कुछ सोचने में मजबूर हो गया, पर उसे ही कचहरी में एक सुचा नाम नाम का दीवान बैठा सी। वो कहने लगा, महाराज सप्पा ने बच्चे साफी होया कर देने, इन्हें नुग्या नु दूध पिला के बड़ा नहीं करना चाहिए, नहीं तो ये बड़े होके सानू ही डंगन गए। जे थानू मेरी गल से इतबार नहीं तो तुसी इन्हें आप गल करके देख सकते हो। जब सूबे ने बच्चा नु पूछा

तेरी ढूंढ कीती असफल होया। तीर्थां च गया जां पानी दे जल दे किनारे सन, उन्दे विच इशनान करके लोग प्राप्ति महसूस करदे सन, समझ लैंदे सन। जां पखान सन भाव पत्थरां दे बुत सन, ओनू भोग लुआ उनके गलां विच हार पाई, लोग अपना मकसद पूरा हो गया, समझ लैंदे सन।

चंद सूरज अवतार। चंद सूरज कौन ने? राम दे कृष्ण दे बड़े वडेरे। कृष्ण चंद्रमा की वंश विचों बड़ी देर बाद पैदा हो जाए, चंद्रमा तो उसको बहुत पहला है, इसलिए उन्होंने चंद्रवंशी आखते। कृष्ण कौन ने? चंद्रवंशी। तो सूरज जड़ा वो राम का वड्डा वडेरा है, बहुत पहला है। जो अजय राम पैदा भी नहीं, सूरज उदों भी सी, राम का सेते भी पैदा, सूरज उदों भी उस तो पहला भी। तो उनकी वंश में राजा राम पैदा हुए, इसे ही उन्होंने सूरज वंशी आखते। हम चंद्रमा के सूरज के ने रामकृष्ण के बड़े वडेरे जिन्हें वंश पैदा हुए, वो चंद्रवंशी ने, राम सूरज वंशी ने, तो सारी जानते वो भी मनते। गुरु कहने जो मैं उनकी खेड में सूरज से चंद्रमा खेडता देखना, उनकी लीला में एक पात्र बन के उनके भै कम करता, भै सूरज भै चंद उनकी खेड में उनके हुक्म कम करता देखना, तो मैं एड्डी वड्डी खेड जिंदे च वड्डे वडेरे रामचंद्र जी दे कृष्ण जी दे हुंदे खेड खेड रहे, मैं उनकी लीला छड़ के कोई होर लीला देखा। गुरु कहने लगे

पैसा भाई गुरदास जी ने भी आखिया चेले साज बजाएंगे नचन गुरु बहुत विधभाई रस पाने वाले ही जेड़े ने उथे की है वाण चेले बाजे बजाते ढोलकियां बजाते छैने बजाते जेड़े उन्होंने

0: लोग लीला देख रहे, लोग नाट्य देख रहे,
1: तो देख देख के हस रहे। उन्होंने कोई ज्ञान नहीं नसीब हो रहा, केवल हस के घर चले जाते, उन्होंने मनोरंजन ही है। और लीला और नाटक जिंदगी का, जीवन का मनोरंजन ही बन गया।

नच नच हसते। ये नहीं सोच रहा कि मेरे जीवन का इस समा व्यर्थ हो रहा है इस नचन से फेरिया लैन में। नच नच के हसता है, खुश होता है, इंजॉय करता है, मनोरंजन करता है, पर जो सारा जीवन व्यर्थ करा जाता है ना तो दरगाह में जाना पैंदा, कोल कुछ नहीं होंदा, प्राप्ति कुछ नहीं होंगी, फिर रोंदा जाता है। नच नच हसते चले सरोए उड़ न जाए सिद्ध न होए, ना उड़ारी उची होंगी अवस्था उची होंगी ना कोई सिद्धि होंगी प्राप्ति होंगी। यह लफ संत भी आए ने कंचन काया कोट गढ़ बिच हर हर सिद्धा सिद्धा अर्थ प्राप्ति, किसी चीज विचो किसी चीज को सिद्ध कर लेना। गुरु कहते हैं जो कुछ तू हूं तक फेरियां लै लैके ना लीला खेड खेड किया है ना, मैंने दिसदा तू जीवन बर्बाद कर लिया, तेरी ना अवस्था उची हुई उनके विचों, ना कोई ज्ञान प्राप्त होया ना कोई सिद्धि हुई। उड़ ना जाए सिद्ध ना होए, ते लगे सारा नचना टपना फेरियां ते लीला एक मनोरंजन बन।

ये एक प्रवान नहीं होंगे, इनके बीच कुछ प्राप्ति नहीं, तो दसो किवें होगी। कहने लगे प्राप्ति तो है प्रेम विच, इसलिए आरंभ विच कर दिता सी, आरंभ विच ही प्रेम का जिक्र कर दिता सी, दूजे संत विच भी कर दिता सी, हर प्रेम बाणी मन मारिया अनियाले राम राम, पहले च भी हर अमृत भिन्ने लोए ना मन प्रेम रतना राम राम। कहने लगे प्रेम ही एक ऐसा साधन है जिंदे विचों साच कहो सुन लियो सब, जिन प्रेम की उतनी ही प्रभ पायो। पर कहन लगे प्रेम लई भी एक शर्त है, शर्त यह है कि तू रब के हुक्म विच आ जा, ना तू गुरु का हुक्म मनन लिये तैयार है, ना तू रब का हुक्म मनन लिये तैयार है, प्राप्ति कभी हो गई। इसलिए ख्याल करी जिन मन पाओ तिना मन पाओ, पाओ का अर्थ है जेडे हुक्म रूपी पाओ विच आ जाते हैं प्रेम का पाओ भी उन्होंने मिलता है। नचन धन मन का चाओ नानक जिन मन पाओ, नानक जिन मन पाओ तिना मन भाओ। उन्होंने मन में प्रेम जागता, जब प्रेम जागता है ना उन्हों की अवस्था बदलती, उन्होंने समझ पै जाती है, और नामी नू ते नाम नू दोहां नू पछाण जांदे ने, ते आखदे ने